महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन दी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनैल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे श्रोतिया लई खास धमाका बाय टू गेट वन फ्री यानी $100 चे 3 परफ्यूम ते नाल इक तोहफा रेडियो उड़ान प्रब संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नूं फुल्लां दी तरह महकाओ अज ही आओ यूनिट 9-1 रीगन रोड ब्रैम्पटन सिख संगत गुरु घर दे नेड़े जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते कॉल करो 4373150701।

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर के ड्रीम्स नु दिखाउणगे सही राह, जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड, यूनिट 2, ब्रैम्पटन, ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी दे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ता फिर तुहाडी टेंशन हुन चूम अंदर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते, जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स, सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड, साउथ ब्रैम्पटन, या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड, साउथ ब्रैम्पटन।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
1: कैनेडा विच प्योर पंजाबी खानिया अते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट,
0: डाइनिंग, टेकआउट, केटरिंग, लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दें देने,
1: वेज नॉन वेज केटरिंग, ताजिया स्वादलिया मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी। सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट।
0: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172। कॉल करो गुरजीत रंधावा 647-338-9172।
2: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
3: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
0: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
1: 416-717-2929
0: 416-717-2929। ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ।

0: 6476562810।
1: ड्राइव कर रहे हो? शोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
2: ड्राइविंग लाइसेंस?
1: नो।
2: पुलिस ऑफिसर?
1: नो नो।
2: ट्रैफिक लाइट्स?
1: नो।
2: देन
0: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 6473259100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
4: भाई ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
5: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखों नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
6: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲ 17 ਸਟ੍ਰੈਥਨ ਐਵਨਿਊ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਵਿਲ ਸੇਖੋਂ 416-819

0: आज कहां हूं क्या हूं, मैं तो पहुंच गई अपनी पुरानी दुनिया में। चलो जी वापस आंदे हैं क्योंकि रील्स असीं दसनी है। सो पंकज जी, नजारा जी तुसी लाइव ऑन करके आए सी, सो की रील्स लगियां
1: जी नजारा का? आई थिंक सबसे पहली एक बहुत ही बढ़िया चीज उनकी है जी, जो एम्बियंस है, जो वहां की लोकेशन है, जो मतलब कम्फर्ट है और जो एक पीस मिलता है वहां पे खा, मतलब बैठ के आप डाइनिंग करने के लिए फैमिली के साथ एंजॉयमेंट, ये सबसे बढ़िया चीज है नजारा की। और जब बात आती है डील्स की, तो उनसे सबसे बढ़िया डील्स लगी है अभी फॉर वीक डे स्पेशल डील है
0: जी।
1: तो आप 30 बंदों की के अगर वहां पे आपको कोई पार्टी करनी है, कोई भी इवेंट करना है, तो वो सिर्फ $900 में आपको मिलेगी।
0: वाओ,
1: तो 30 पीपल इन ओनली $900। इसके साथ आपकी सारी चीजें उसमें जो इंक्लूडेड है, वो आपको स्टेज इंक्लूडेड होता है, वहां पे म्यूजिक सिस्टम है वो इंक्लूडेड है, बेसिक डेकोरेशन जो है वो इंक्लूडेड, और इतना सारा बढ़िया पार्टी हॉल के साथ डिस्को लाइट्स बिल्कुल सारा और फूड।
0: आर यू श्योर? $900 बातचीत तुसी हिडन चार्जेस नहीं कहने नजारा
1: नहीं,
0: वाले
1: नहीं, नहीं,
0: ओके जी। सो जिन्हां दियां पार्टीज आ गईयां आ या आन वालियां, सर्दियां दा दिन आ रहा है, सो पहला ही बुक कर लो क्योंकि नजारा दी टीम ऑलवेज बुक हुंदियां आ। सो तुसी आप दा डे एंड स्लॉट उन्हां नूं दस दो, तुहानूं केड़ा चाहिदा, सारी टेंशन दो नजारा नूं, घरे भी फूड लियाओगे बाहरों, टेंशन स्ट्रेस प्लस पैसे उस तो ज्यादा ही लग जांदे आ। सो तुसी कॉल करनी है नजारा दी टीम नूं, ते टीम दा नंबर,
1: हाँ जी, तो नजारा पे आपको कॉल करना है तो उनका नंबर है जी 905-451-2600, 905-451-2600 पे आप कॉल कर सकते हो नजारा की टीम को और पार्टीज बुक कीजिए। इसके अलावा इनकी बहुत सारी डील्स चल रही है, आप इंस्टाग्राम के पेज पे जाओगे तो काफी सारी डील्स भी मिलेगी। इसके साथ संतोष जी, मैं तवा किचन का भी मैसेज देना चाहता हूँ,
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज आई थिंक थोड़ा आज उनकी कोई केटरिंग है तो उनका मैसेज
0: आया, बिजी चल रहा है, मैं भी उन्होंने मैसेज किया था बट वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहे। पंकज जी लाइव ऑन लोकेशन करते रहते हैं,
1: तो तवा किचन की जी उनका जो टेस्ट है वो ढाबे जैसा है और प्रिपरेशन घर जैसी है
0: जी, बिल्कुल।
1: जो अगर आपको वैसा खाना चाहिए तो आप पहुंचे तवा किचन पे 50 सनीवेल गेट पे। और जब डील्स की बात आती है तो आपको 1299 में 10 आइटम 1+1 फ्री है। वो कौन कौन से है जी? अमृतसरी कुलचा आपको मिलेगा 1299 में 2
0: जी,
1: छोले पहाड़गंज के छोले भटूरे, लुधियाने वाला न्यूट्री कुलचा
0: जी,
1: वेज नूडल्स हक्का नूडल्स मिलेंगे आपको, चिकन बिरयानी सॉरी वेज बिरयानी मिलेगी आपको 2 मिलेगी आपको 1299 में, तारा सिंह परांठा सबसे बड़ा परांठा होता है थाल साइज का, वो भी उसके साथ 2 चाय आपको मिलेंगे जी सिर्फ 1599 में।
0: वाओ,
1: तो इतनी सारी, ये तो सब एक इंट्रोडक्टरी डील्स है
0: जी।
1: इसके अलावा बहुत सारी डील्स आपको मिलेगी तवा किचन पे। तो पहुंचना कहाँ पे है? एक इनकी लोकेशन है जी 50 सनीवेल गेट पे, दूसरी है जी 30 रेमलर ड्राइव पे
0: जी।
1: तो इनका नंबर है जी 905-790-1699 पे आप कॉल कर सकते हो जी।
0: सो सारे ने पहुंचना है नजारा ते तवा किचन ते एंड डील स्क्रैप करनी है क्योंकि इन्हां दी प्रेपरेशन जेड़ी हैगी है वो हैगी है
1: घर वर्गी
0: ते टेस्ट हैगा ढाबे वर्गा। सो टेस्ट एंड पैसे एंड कस्टमर सर्विस ते नंबर 1 और तुहाडे पैसे नहीं, आई एम सो सॉरी, मेनू कल किसी दा मैसेज आया संतोष पैसे नहीं बोलना, यू आर इन कैनेडा डोंट फॉरगेट दिस, सो डॉलर, आई एम सो सॉरी कल मैं पैसे दा वर्ड यूज किया सी, सो डॉलर बचाने हैं तुसी, डॉलर किवें बचाने हैं, पहुंचो तवा किचन ते। असी दस दिए माल्टन गुरु घर साहिब दे विच नगर कीर्तन हैगा September 13 दिन एतवार, सारे अपनी फैमिली दे नाल पहुंचो। जे कोई इंडिया तो नवे आए हो या आप दा प्रोफेशन चेंज करना है या आप दी जॉब दे नाल नाल तुसी कुछ नवा करना चाहते हो, तो तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मास्टर योर एग्जाम दी टीम नू, जो कि तुहानू रियल एस्टेट एग्जाम्स क्लीयर करन च हेल्प करनगे, मॉर्गेज इंश्योरेंस बिल्डिंग बिल्डर्स दा लाइसेंस लेना है या तुसी होर किसे तरह दा भी कोई लाइसेंस लेना है, ते तुसी कॉन्टैक्ट करना है मास्टर योर एग्जाम, ते नंबर हैगा 672-667-6576, 672-667-6576। ते गल करदे हां असी हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर, 19 साल दा एक्सपीरियंस हैगा इन्हां कोल एंड 38 ऑटोमैटिक रोड ब्रैम्पटन, गैरी गरेवाल दी टीम अमेजिंग। सो तुसी कॉल करनी है और आपकी गड्डी दी कोई भी सेफ्टी चेक करवाना है या ऑयल चेंज कराना है या होर किसी तरह की कोई रिपेयर है, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੈਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਹਾਈਲੈਂਡ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, 38 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਡ, ਬਰੈਂਪਟਨ, 905-463-6363, 905-463-6363. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਮਲ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਲ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, 2-piece ਲਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਜੀ ਕੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਡੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, 905-239-7711, 905-239-7711. ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਫੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 647-501-1433, 647-501-1433, ਇੱਕ ਜੋਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੋਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਨ ਰੈਕਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ HSTV ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਬਾਈਵੀਕਲੀ ਸੋਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ 6475011433। ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾਨਕ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਟੀਮ ਕੋਲ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 416-721-1521-416-729-1521। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, $150 ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਲ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ, 647-656-2810-647-656-2810 ਸੋ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 416-302-9941, 416-302-9941, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਖਮਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, 416-816-8104, 416-816-8404।
2: Hey, it's Jason McCoy. You know, my life is basically a country song. Farm in the middle of nowhere, wife, kids, dog, tractor, and yeah, terrible internet. Zoom calls, streaming, kids gaming, boom, everything crashes. What do you do? Well, Starlink is what you do. Fast, 400 megabytes per second, reliable, rain, snow, doesn't matter. We're streaming, working, even watching the game in 4K. And the best part? It's portable. Cottage, farm, wherever, we're connected. Bad internet? You need Starlink. Available everywhere.
3: This is AM 530 CHLO AM, serving Brampton.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: License number 10394.
2: Are you paying too much for insurance? Let me help you save. Whether you need auto, home, truck, or business insurance, I compare quotes from multiple insurance companies to find the right coverage at a competitive price. For fast quotes, personalized service, and coverage you can count on, you can call or text me at 647-919-1002.
3: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-765-2340 647-765-2340।
2: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: 3003100 या मिलो 70 Delta Park Boulevard Unit 11 Brampton या बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
1: यार मेरा तो डाटा ही मुक गया ते जेड़ा मैं प्लान दा पे कर रही हूँ वो तो बिल्कुल ही वेस्ट है।
2: ओए तू स्टिल डाटा इश्यूज ना डील कर रही है, तेनू वैल्यू मोबाइल जाना चाहिदा। मेनू बहुत वधिया प्लान मिल गया सीगा जेड़ा मेरे बजट च सी।
1: सच्ची?
2: हाँ यार, वैल्यू मोबाइल ते कैनेडा दे मेजर प्रोवाइडर्स दे फोन प्लान मिलदे ने, उत्थे मेनू मेरे बजट दे हिसाब ना परफेक्ट प्लान मिल गया।
3: इस सीजन ओवर पे करना बंद करो, स्ट्रीम टॉक ते टेक्स्ट करो बिना स्ट्रेस तो। विजिट करो valuemobile.ca या अपने नियरेस्ट वैल्यू मोबाइल लोकेशन ते जाओ। साडे मोबाइल एक्सपर्ट्स तुहानू बिल्कुल परफेक्ट फोन ते प्लान देंगे जो कि तुहाडे लई बेस्ट होवे।
1: ओ अच्छा, मैं आज ही वैल्यू मोबाइल जाके आनी हां।
2: हां हां, मैं भी तेरे नाल ही चलदी हां, मैं भी अपने फोन नु अपग्रेड कराना आ।
3: वैल्यू मोबाइल, द राइट फोन, द राइट प्लान, द राइट प्लेस।
4: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮਨਸਾ ਜੰਸ
5: ਟੋਰਾਂਟੋ। ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दिखी उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगी.
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहर बाहर पा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.
3: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 4165246704 4165246704.
4: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers.
5: नमस्कार सत श्री अकाल. मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता जी की चौकी.
6: मान तू बताया मेरा दुख सारे काल के.
5: On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Herman. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शाम म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी. हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है. सो गाइज सी यू ऑन 4th September.
7: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे. साड़े अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते. तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विद शाबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस.

गुड मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करता कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखिंदर जी साहब वतनों दूर तुहाडे लई पेश करनगे। हुण तों लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999-905-799-0999। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। अज 6:51 ते सूरज आया, 7:38 ते चले जाणा।

0: And office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
1: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है
2: 1657 01 57 आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनिया खुशियां दे जश्न मनाओ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन कर देने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन
3: जी दोस्तों वतन दूर दे विच आप सब दा निघा स्वागत है चढ़िया रहन दे इश्क दा सूरज नजरां फेर के शाम न कर चल बह के मसले हल कर लिए तक्का तू शरे आम न कर जाना है ते चुप करके तुर जा एवें सानू बदनाम न कर रज के मैं अज कल्या पीणी जूठा मेरा जाम न करन सो दोस्तों इन्हां सत्रां दे नाल प्रोग्राम च आप सब दा निघा स्वागत है थर्सडे दी दोपहर है अज दे प्रोग्राम च काफी रौनकां काफी बिजी प्रोग्राम होवेगा काफी सेलां ते काफी साडे गेस्ट जिन्हां नाल असीं तुहाडियां गल्लां बातां करवाउणियां गीत संगीत वी तुहाडे तक पेश करना ते प्रोग्राम दा हिस्सा तुहाडे तक असीं बुडबाइन बैंकुट हाल ड्रीम कन्वेंशन सेंटर मोना मैंगी जी सिंगापुर जूलर टिल्लो वीडियो समोसा स्वीट फैक्ट्री टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक हरप्रीत सैनी कटारिया टूर एंड ट्रैवल टिक्का जंक्शन ढाबा ऑन द फॉल किया 427 अंकार टूर एंड ट्रैवल पिज़ा डिपू अंजम क्रेशी क्विक मास्टर क्विक फिक्स मास्टर जेडी इंश्योरेंस दे सहयोग नाल असीं पेश करांगे साडा नंबर 9057990999 है लाइनां साडियां ओपन है अपने दिल दी गल अपने आस पास दी गल जां फिर कोई भी गल होवे तुसीं लखां स्रोतियां तक जां साडे तक सांझी करनी चाहुंदे हो ते जी आयां नूं साथ दे रहे ने स्टूडियो च किरण होरी किरण जी
4: पहुंच चुके ने और वधिया रेडियो प्रोग्राम तुहाडे तक पेश करने की कोशिश करांगे गल्लां बातां दे नाल नाल दी नाल कुछ म्यूजिकल आपां ब्रेक्स लवांगे कमर्शियल नाल दी नाल स्पॉन्सर्स दे मैसेजेस दे नाल अज दा प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा करदे आं वैदर भी काफी जिहड़ा जी गुड हैगा अज दा वैदर हैगा 23 डिग्री शाम नूं 17 डिग्री ओवरनाइट 13 डिग्री है जी और हवा की स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटे की जिहड़ी जी रफ्तार दे नाल हैगा और तुसीं स्टूडियो दे विच कोई भी गलबात करनी होवे या अपने किसी भी तरीके नाल कोई सांझ पाउणी होवे ते नंबर 905-799-0999 ते जिहड़ी है जी गलबात कर सकदे आ और अज दे प्रोग्राम दे विच साथ दे रहे ने द मास्टर बिल्ड फैब वाले और तुसीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी जानकारी लैनी होवे या साडे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर भरा ने जिहड़ा जी बल्क दे विच समान चकना है ते गलबात तुसीं द मास्टर बिल्ड फैब वाले नाल कर सकदे आ 437-955-2220 ते और अज दे प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता या मुकेश चौहान फ्रॉम मोर्गेज डिलीजेंट मोर्गेज संबंधी कोई भी जानकारी तुसी लैनी होवे ते तुसी इन्हां नाल गलबात कर सकदे आ अज दे प्रोग्राम दे विच आपां इन्हां दे नाल भी जिहड़ी जी थोड़ी जी तुहाडी गलबात जरूर करावांगे
3: जी एक प्रोग्राम की शुरुआत लो फिर एक प्यारे जे गीत दे नाल करदे आ उस तो बाद फिर सानू काफी वधिया वधिया डील्स जिहड़ियां लैके देणियां एनकां दियां इलैक्ट्रॉनिक दियां ते नाल होर भी बहुत सारे समान दियां जी

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟਲੈਂਡ 905-456-9900।
0: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ 300 ਸ਼ਬਦ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਏਅਰਪਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ

0: की सभी नई नई व्यस्त है, कृपया थोड़ी बैग में डाइल कर।
1: मार मार के रिंगा,
0: आपका बैलेंस कॉल के लिए पर्याप्त नहीं है, लोन लेने के लिए 446 डायल करेंगे।
1: मार मार के रिंगा।

0: ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारां लोकी आउंदे ने ते हजारां ही जांदे ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहिंदे ने।
3: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो।
2: कॉल 416-457-3381 416-453-3381
3: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स लई बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
2: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे लई पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
3: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381
4: ब्रैम्पटन दे विच सेंस 1998 ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100% ਰੀਅਲ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਚੰਗੇ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ $50-$60 ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਗਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ ਨੰਬਰ 24 ਰਿਗਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 9057918056 ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-792-8056